बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौते जी सहाय वार। श्री भगौते जी के पातशाही दसवें प्रथम भगौते सिमरकै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जस डठ सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जे सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे पंजा प्यारिया सोहां साहिब जादियां चालियां मुकतियां। हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता। तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। बोलो जे जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आ रिया नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। बोलो जे पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आ रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता। श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाहा दान परुसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इसनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जे सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बगसो हे नमानियां दे मान।
ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ

0: कर जाय द्रश्य के तो फल फिके फूल पक पके कामनावे पत मिठत निवे नानका गुंज गिया तत सब को निवे आप को हो पर को निवे न कोए तरत राजू तो दिए निवे सो गौरा हो अपराधी दूना निवे जुहंता मिर्गा है शीश नुमाया क्या थी है जरिदय कुसुदे जाय महला पहला
1: पट पुस्तक संध्या बादंग सिल पुस बगल समादंग मुख चूत भूखू सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक ललाटंग दोए खोती बत्रक पाटंग।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहिन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कहना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साह साहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जिह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिट है खेन जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों देन जिह सतगुर सिमरंथ जीय की तपत मिटावै जिह सतगुर सिमरंथ रिद सिद्ध नव निद पावै सोई राम दास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करहो जिह सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरहो नरहो अगन ना दहै पवन नहीं मगन तस्कर नेर ना आवै राम नाम तान कर संचाउनी सो तान कत ही ना जावै हमरा तान माधव गोविंद तरनी तार एह सार तान कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है इस तन कारण शिव सनकादिक खोजत भए उदासी मन मुकंद जिहबा नारायण पर न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुर दीना तास सुमत मन लागा जलत अंब थांब मन तावत परम बंधन पाओ भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर कोट असब हस्ती तुम कर कोट लाख कोट असब हस्ती हम कर एक मुरारी कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी
तुम कर लाख कोट असव हस्ती, हम कर एक मुरारी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम्हे सजन सोहेले। राखहु राखन हार दयाला, नानक करके गोले।

एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो शरणाई अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपना तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुदे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहा साह जिस पास बैठिया सोहिया सबना देश सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा जिस पास बैठिया सोहिया सबना देश सत नाम श्री वाहेगुरु साहिब जी राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिना बूढ़ते अधिकाई राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई

बनता सुत देह ग्रेह संपत सुखदाई इन मैं कछ नाहीं तेरो काल अवद आई अजामल गाज गनका पतित कर्म कीने तेउ उत्तर पार परे राम नाम लिने सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज न आई

पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेला सगल जगत चंगे आईया बुरिया आईया वाच तर महदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए।

0: जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिनकी ती सो पार पया
1: कह नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहा सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर

ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੀ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਹੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧਨ ਧਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਦ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਾਹੇ ਰੀ ਮਨ ਚਿਤਵਹ ਉਦਮ ਜਾ ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਭਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤੋ ਪਾਈ ਤਾ ਕਰ ਜਕ ਆਗਾ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਬਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਕੋਈ ਨ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੀ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਉਡੇ ਉਡਾਵੈ ਸੈ ਕੋ ਸਾਂਤ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖੁਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰ ਵਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰ ਵਰਿਆ ਰਾਗ ਆਸੈ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੁਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਅਗਮ ਆਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤਦ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਰਜਨ ਹਰ ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰ ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੋ ਸੰਤ ਹੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੋਜ ਬਿਨਾਣ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਦ ਮਿਣੇ ਅਵਰਨ ਜਾਣ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣ ਜੋ ਸੇਵਹ ਤਦ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਨ ਕੁਰਬਾਣ ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤਦ ਜੀ ਸੇ ਜਾਣ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿੰਨ ਤੂਟੀ ਜਮਕੀ ਸਾਸੀ ਜਨ ਨਰ ਭਾਉ ਜਨ ਹਰ ਨਰ ਭਾਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਧਨ ਜਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਨ ਬਲ ਜਾਸੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਦ ਜੀ ਹਰਿ ਅਣਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਤੇਰੀ ਅਣਕ ਰਹੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਤਪ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤ
तेरे अनेक पढ़े व सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी दो भाव ही मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंबर करता जी तुद जे बड़े अवरना कोई तू जग जग एक सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुदे आपे भावा सोई वरता जी तू आपे करे सो होई तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुदे आपे सरज सब गोई जन नान गुण गावे करते के दी जो सब सका जान होई आसा महला चौथा। तू करता सचियार मंडा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तू दे सोई हम पाई रहा सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनु कृपा करे तन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुकवाया तुदे आप बिछोड़े आप मिलाया तू दरिया सब तुझे माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी दंद सब तेरा खेल बेजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना ए सोई जन जाना हर गुण सद ही आख बखाण जिन हर सेवया तन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होई तुद बिन दूजा अवर ना कोई तू कर कर वेख जान सोई जन नान गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला। तित सरबरड़ा भई निनवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चल हम देखा तह डूबी अले मान एक न चेत समूर बना हर विसरत तेरे गुण गलियारा ना हों जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तन की शरणा जिन तू ना ही विसरिया आसा महला पंजवा। भई प्रापत मान खुदे हुरिया गोविंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरा किता ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सुरंग जाम लाग भवजल तरन कै जन्म मृथा जा तरंग माया कैरा जाप ताप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध न जानिया हर लाया कह नानक हम नीच करमा शरण परे की राख हो शरमा जाप ताप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध न जानिया हर राया कह नानक हम नीच करमा शरण परे की राख हो शरमा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवे बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तम काव हो आप हाथ दा मोह बचाव हो सुखी वसा मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निध करदा करिया सब वरन का वास संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें साड़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाह सो तुम ते पाऊं सेख सेख हमारे तारिया है चुन चुन सतर हमारे मारिया है आप हादा मुझे वरिया मन काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्त जो करिय हर अच्छा
राख लिहो मोह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम्ह प्री चतुर दस कंता काल पाई ब्रह्मा बाप धरा काल पाई शिवजी अवतरा काल पाई कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की वेदराज ब्रह्मा ज्योथी जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत मनायो देव दयांद जच्छन उपजायो आदि अंत कै अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेवगुण सुख दियो सतरन को पलम बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चीटी ते कुंचर स्थूल सब कृपा दृष्ट कर फूल संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाण घट घट के पट पट की जान जावद कर करा करतार प्रजा तरतव दे अपारा जब या कर करत हो कब हूँ तम मैं मिलत दे तरसव हूँ जेते बदन सेठ सब तार आप अपनी बूझो चार तुम सब ही तेरा तंडालम जानत भेद भेद अरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूड़ उचारत भेद जाको भेव न पावत भेद ताको कर पाहन न मानत महामूर काश भेद न जानत महादेव कौ कैत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह चेती तुमरा लखन जाय पसारा किहे बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूप रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जोरज सेतज कीनी उत्पज खान बह रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो संगर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप श्याम भव अब रक्षा मेरी तम करो सिखो बार सिख संघरो दुष्ट जिते उठ बत पाता सकल मलेश करो ननकाता जे अस्त तब सरनी परे तनक दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जावन पग परे तिहारे तनक तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते है ताके काल नेक है रक्षा हुए ताही सब काल दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताक ताप तन कमो हर हो रद सद कर्म सब होई दुष्ट स्वस कन कोई एक बार जिंद मैं संभारा काल फांसते ताहे उबार निर नाम तिहारो कह दारद दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दाले हो उबारी सर्वठार मोह हो सहाय दुष्ट दुख तेले हो बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दाले हो उबारी सर्वठार मोह हो सहाय दुष्ट दुख तेल हो बचाई सोईया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने आओ राम रहीम प्राण कुरान अनेक कह मत एक न माने आओ सिमरत शास्त्र वेद सब वह भेद कह मेक न जाने आओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तुहे बखाने दोहरा।

आनंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तो पाया सहज सेती मन बजियां बधाइया। राग रतन परिवार परिया शब्द गावण आईया, शब्दो तां गाव हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदर वरनाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा कार्ज सब सवारना। सब नंगलन समर्थ स्वामी सो के मन हम सारे, कह नानक मन मेरे सदर वरनाले। साचे साहेब क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किश है जिस देश पावे। सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुरबान कीता गुरु वेट जिस दिए बड़े आईया। कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागा, कर सुभागा शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम बाया तुद जन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तस खोआ तित कर अनहद।

पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवता सतगुर रहया पार पूरे बनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवता सतगुर रहया पार पूरे बनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तन वस्तु पई सत संतोख विचार अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधार जे को खावा जे को पुंचा तिसका होए उधार ये वस्त जी न जाई नित नित राखुर तार तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो।

0: कितोई मानर गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सजन मिले नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थीवा रिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सजन मिले नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवा हरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती दी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरकाय गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दस हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठाए सब दुख जाए तेग बहादुर समरै घर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु।

दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख हुआ सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह।

मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी वेदन तू जानता सा, अबर क्या जाना कोई। मेरे सहा मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी वेदन तू जानता सा, अबर क्या जाना कोई। साचा साहेब साच तू मेरे सहा, तेरा किया सच सब होए, झूठा किसको आखिया सहा, दूजा नहीं कोई। सवना बिच तू वरतदा सा, सब तुझे त्यावे दिन रात, सब तुझे थावे मंगदे मेरे सा, तू सबना करहे एक दाता, सब को तुझी बच है मेरे सहा, तुझ ते बाहर कोई नाही, सब जी तेरे तू सब सदा मेरे सहा, सब तुझी माए समाहे, सबना की दुआ सा मेरे प्यारे, सब तुझे त्यावे मेरे सा, ज्यों पावा त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे त्यावे मेरे सहा, ज्यों पावा त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परि एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलांत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सो कहौ टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। हो वै सिफत खसम दी, नूरियर सह कुर सह चटिया, तुद डिठे सच्चे पात साह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहा दै साहु, जिस पास बैठिया सोही है, सब ना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहा दै साहु, जिस पास बैठिया सोही है, सब ना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला चौथा। इच्छा पूर्वक सर्ब सुखदाता हारे, जाकै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीअड़े, ता सर्ब सुख पाव है मेरे मना। इच्छा पूर्वक सर्ब सुख दाता हरे, जाकै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीअड़े, ता सर्ब सुख पाव है मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हालत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना। रहाओ जह हर

गुर की टेक रहो दिन रात, जां की कोई ना मेटे दात। गुर परमेश्वर एको जान, ज्योतिष पावे

ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितारे। निमाणिया दिमान गुरु नितानियों के तान, ने उठिया दियोट ने आसरियों

मुसलमान सिर्फ शरीयत बड़ बड़ करे बेचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू सलाही सालाहन दर्शन रूप अपार तीर्थना वे अर्जा पूजा अगरवास बेकार जोगी सुनते आवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे बंगे सहसा गुणा सोप करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावे कार एक होदा खाए चले अथाऊ तिना पीका एकार जल थल जिया पुरिया लोहा करा कर ओए जे आखे सो तुहे जाने तिना पी तेरी सार नानक भगता भुख सलाण सच नाम आधार सदा आनंद रह।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना हो ओई तू करता करना मैं ना जाओ करी ना हो बलहारी कुदरत वसे आ तेरा अंत

शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे कौ जाने पहेव, नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव महला दूजा एक।

परमताम शुद्ध बुद्ध निरेकार बेसुमार सर्वर को काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख तरयो हर नख सुहरयो नख बिदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म।

जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ो पास, ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो।

0: जय सतगुर सिमरंत नयन कहते मर मिटै खेन, जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जय सतगुर सिमरंत जेके तप्त मिटावै, जय सतगुर सिमरंत हृदय सिद्ध नमन दुपावै। सोई रामदास गुरबल पन मिल संगत तन तन करहो, जे सतगुर लग प्रपाइए सो सतगुर सिमरहो नरहो।
1: राज जोग तख्त दियन गुर रामदास, प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद, तारण मनुख जन कियो प्रगास। गुर अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान, पंच भूत वास कीने जमत ना त्रास। गुर अमर

अगमे अनंत अनादि आदि जिस कोई न जाने, शिव ब्रंश तर ध्यान नितै जिस वेद बखाने, निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गरन समथ तरन तारन प्रभ सोई, नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथरा।

0: अथवा जुग जुग फेर मटाई है ज्ञानी बुझेता है सात जुग रात संतोख का धर्म गिर अथवा उतरे तेरा जते का जोर गिर अथवा द्वापर तपे का सत अगे रथवा काल जुग रथ अगन का कूड़ गिर अथवा महला पहला
1: शाम कहे से